Thank you.

I'm going to go to the next one.

जय गुरु बाबा। सचा सवा छ बजे हमार संदेश में अपना स्वागत बा कुमार उत्पादित हमार संदेश पर दिया का साथी एफ एम राजापुर पार्टी का रेडियो प्रतिबोध एफ एम कोहलपुर रेडियो हाथी मरौ चाखी गाँव पालिका माध्यम से प्रसन्न प्रसारण पीटिका हमार संदेश कर पूरी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक में से बांसगढ़ी नगर पालिका खर्च निर्देशिकाओं कार्य विधि राज पत्र में प्रकाशन स्थानीय पासम मौसम पूर्वानुमान पुगैनापुर किसान कला के स्थान विशेष सूचना आवश्यक मुख्यमंत्री आचार्य का पढ़ाई वर्गीय निकुंज खाद्य अवस्था अध्ययन करा आहारा प्रजाति का गणना शुरू राप्ती स्वनारी का बनावा महिला उपक्रमण सुमान रूपमा में संलग्न आचरण पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेकर पूरा सचिव समर्थन की देना युवक पत्राओ पूरा समाचार बांसगढ़ी नगर पालिका नगर कार्यपालिका का प्रचार से स्वीकृत तिलक छठ निर्देशिका कार्य विधि और मापदंड राजपत्र में प्रकाशन करेगा। सामाजिक सुरक्षा महिला संरक्षण स्वास्थ्य को स्थानीय सेवा व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाना उद्देश्य नगर कार्यपालिका कचहरी में से स्वीकृत तिलक कार्य विधि तथा निर्देशिका बांसगढ़ी नगर पालिका राजपत्र प्रकाशन कर स्थानीय सरकार संचालन 2074 दफा 102 दफा 2-3 प्रमोजिम शुल्क जानकारी का सूचना प्रकाशन कई नगर पालिका चलने बाद राजपत्र प्रकाशन दस्तावेज में बाघ को संचालन कार्यविधि 2083 लैंगिक हिंसा संशोधन में कला सिफारिश प्रणाली संबंधी निर्देश 2083 असंगठित क्षेत्र में आपद श्रमिक महिला तुरंत प्रभावित तथा हिंसापीड़ित महिला को लाकर बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2083 समावेश कर उसी का व्यवसायिक बीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2083 उपयुक्त कार्यविधि तथा समुदाय स्तर में स्वास्थ्य खाने पानी तथा सरसफाई प्रबंधन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2083 समेत राजपत्र में प्रकाशन कलक पासवाड़ी नगर पालिका चलने नारी पालिका कार्यविधि तथा निर्देशिका सामाजिक सुरक्षा महिला संरक्षण स्वास्थ्य व स्थानीय सेवा व्यवस्था होना थप व्यवस्थित बनाए से पुनः विश्वास करवा जानकर दुर्घटना आयोजित एक कार्यक्रम में सभा स्थानीय दर्शन मौसम पूर्वानुमान

प्रदेश के मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य मौसम पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणालीकरण प्रभावकारी बनाए प्रदेश सरकार समन्वय को सहकार व सुदृढ़ बनेगा प्रक्रियाबाट वहां स्थान विशेष मौसम पूर्वानुमान प्राथमिकता अर्थ संघीय सरकार से सहकार्य करना उल्लेख करबाट मुख्यमंत्री आचार्य मौसम संबंधी सूचना समयमा नागरिक समक्ष पुगाए प्रभावकारी समयका निर्माणका आवश्यकता प्रकृति किसान सम्मान दैनिक मौसम सूचना पुगाए स्थानीय संचार माध्यम सामाजिक सञ्जाल तथा समुदाय स्तरका समस्याहरू परिचालन गर्न

जानकारी वेबसाइट संचार माध्यम तथा सामाजिक संचार मार्फत प्रभाग मीडिया वर्गबाट आम नागरिक का हातमा सूचना पुगाए मोबाइल एसएमएस तथा अडियो सन्देश प्रणाली मार्फत सूचना पठाइन तयारी मीडिया वर्ग जानकारी तर्फबाट कार्यक्रममा दाङ्गो प्रक्रियाका निर्णय क्षेत्रका मनयनको सहभागिताबाट कार्यक्रमका सहजीकरण रेडियो प्रभाव एफएमका प्रस्तुता बिन्दु चौधरी कलत कान्छे ओम प्रकाश गुप्ता खबर पठाइनुबाट बालिका शिक्षा प्रवर्धन तथा सामाजिक कुटी न्यूनीकरण करना उद्देश्य सहित ग्रामीण स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा कुटी वरिष्ठ भारतपुर विद्यानगर पालिका का विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा उपहन शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम संचालन कर कार्यक्रम अंतर्गत बाल वर्गीय चारित्रिक पांच जन्य माध्यमिक विद्यालय का एक तीन बाल बालिका उपहन विद्यालय पोशाक छोड़ा कापी पेन स्वेटर और ज्योमेट्री बॉक्स वितरण प्रतियोगिता नगर प्रमुख विराजदार शिक्षा में लगानी करना समाज का भविष्य निर्माण मिलन प्रकृति बालिका शिक्षा सुनिश्चित कर स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहकर पत्रबाट नगर उप प्रमुख रक्त कुमारी पांडे बालिका शिक्षा ने बाल विवाह हिंसा और विभेद न्यूनीकरण में सहयोग पुग्न प्रकृति नंबर चार गौड़ा अध्यक्ष तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष सीताराम योगी का सभाध्यक्ष तमानिंजल कार्यक्रम का संचालन संस्था का फील्ड अधिकारी परेश प्रसाद भट्टाई का प्रधान वरिष्ठ का अनुसार बारापटिया नगर पालिका का नौ विद्यालय का 225 विद्यार्थी कार्यक्रम से लाभान्वित प्रक्रियाबाट संस्था कक्षा आठ व नौ का विद्यार्थीगण 2000 रूपया तथा कक्षा दस का विद्यार्थीगण 7000 रूपया समय उपलब्ध कराई थी। रक्षा जिला संस्था विद्यालय छोड़कर पूर्व विद्यालय उन्होंने संपर्क रक्षा हाल प्रक्रिया में एसजीटी अमर कार्यक्रम से बाल विवाह मानव बेस्तीकरण बाल श्रम तथा लैंगिक हिंसा विरुद्ध जनचेतना मूलक गतिविधि संचालन बीती रहता बर्दियाका राजापुरमा खरेद दत्त एकजना ज्यान दिनमा ज्यान छैटामा राजापुर दुई सोहरियाका जनकी थारहरूबाट राजापुर नगरपालिका दुई स्थित बदलपुर पूर्वा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको बनुवा क्षेत्रमा रूपमा घटनाक्रममा अचानक रूपमा खरेद दबे 45 वर्षीय थारको घटनास्थलमा ज्यान गएर प्रहरी चलाइरहेका स्थानीयवासी प्रहरीका सहयोगमा सरपुरदार दुई प्रहरी जानकारी दिएमा घटना भए थप अनुसन्धान बितिएला इलाका प्रहरी कार्यालय राजापुर जानकारी दिएमा भारतीय राष्ट्रिय निकुञ्जमा पक्षका प्रमुख धारा मन्ना वन्यजन्तुका गणना शुरू गरिएका निकुञ्ज चित्तर पासिना हर्ना बारासिन्धे चित्तर लगुना रतुवा वंशुवर बाँदर लगायतका प्रजातिका अवस्था अध्ययन गरेर गणना शुरू गरिएको हो। भारतीय राष्ट्रिय निकुञ्जका नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका आर्थिक सहयोगमा गणना शुरू गरिएको कोषका प्रमुख अजित तुम्भामके जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार निकुञ्ज भरलाई तथा वन्यजन्तुगणका आवश्यक पर्न खाद्य स्रोतका अवस्था एकीकरण असिन गणना कैदालाई निकुञ्जका संरक्षण अधिकारी तथा सूचना अधिकारी सरोजमणि पौडेल भुगतानका हार प्रजातिको पहिचान संख्या र खाद्य सन्तुलन अवस्था मूल्याङ्कन गर्न गणना महत्वपूर्ण भूमिका खेलबाट गणनाका लागि एकजना जनशक्ति पाँच हटिया हो चार मोटरसाइकल परिचालन गरिएका वैशाख एक किसको विशेष शुरू विधेयक गणना 20-30 संचालन बिना चलान दिएका भर्तियाको खरिद तथा सानो उद्योग कार्यालयका नव भवन निर्माण पाँच वर्ष सेयर पत्र प्रवेश कार्यालय महँगा भाडामा तीर्ख सञ्चालन तर बाध्य विभाग गरिया स्थित अमन कन्स्ट्रक्सन 2077 फागुनमा 60,88,000 रूपियाँमा तीन तले भवन निर्माणका जिम्मालेहरूद्वारा 2078 असार बितामा निर्माण सम्पन्न गर्न सम्झौता भइसके अघिसम्म एक तला निर्माण कम्पनी फ्याट सहित 34,45,000 रूपियाँ भुक्तानी लेखना कार्यालय चलाइरहेका कार्यालय प्रमुख इन्द्रराज खत्रीका अनुसार फ्याट फ्याडा काकेद्र उपचार प्रवेश निर्माण
સંસ્થાની સંપર્કમાં આવી હતી છે તિસ્તા ખેરા થોપમત મેચ સમય નિમજલતો છે હાથ છેકારા દખવાના તૈયારી ગુજરાત મહાસાર અંતર્ગત ભવન નિર્માણની પણ હવે કાર્યાલય હાલ માસિક 30,000 અર્થાત વાર્ષિક 3,60,000 રૂપિયા ભાડામાં તીર્થ સંચાલન હોઈ રહેલા આ સમીચર આજે સમીચર વિશેષ મહંગો આપના પ્રશ્ન ઓ સરકાર લક્ષી પ્રસાદ આપણે ખરમાંથી આ સંગ્રહ બાસભાઈ નગર પાલિકા હાથક ટી આર ચૌધરી કા પ્રશ્ન લેખાણ માંથી

संदेश

गुनासो या तेरे

स्वास्थ्य सुरक्षा संख्या मंत्रालय इसी दिन में चीफ डायरेक्टर नियंत्रण आशा

Bu şubat yarısı düşünün, sizin tatlı bir

I'm going to go to the next one.

0: कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्य नेटवर्क के द्वारा चाहित मधानी सर्वे
1: किस्ता तिर्नुसे त सर्वघट पर्व हो। तीन लाख लिएन तीन लाख से धेर तिर्सेको तिर पर्न परिवारमा छ।
0: तीन लाख रुपियाँ ऋण लिएर तीन लाख रुपियाँ फिर्ताकै सेवामाथि प्रतिशत ब्याज तिर थाहा छ। आफ्नो सामान्य ब्याज होइन तीन लाख रुपियाँ से ध्यान तिर पर्न
1: कमल को

नक्कली पाँच हजार

अतः हमारे इस जो घर में संजीव साहिब साहब बनवा

नहीं कर रहा मैं मासिक आर्थिक नाश आऊँ क्योंकि उसे देखिए अर्क शांति छेन मैं मासिक आर्थिक नाश भरी विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथ में

0: सुन रहे बताओ भाइयों
1: राजनीतिक सीट लगे राजनीतिक अब तुरंत जे जी पार्टी है तो चाहिए हम जिला प्रशासन

बताने की खबर पत्र को साफ। इस बीच क्रीड़ा प्रेस का मुताबिक भी आज सकेला उपभूमि पर्व मनाया काठमांडू उपत्यका पर बसवास करते आया क्रीड़ा प्रेस समुदाय का राय सुनवार लिंबू रैया समुदाय ने विभिन्न

Thank you.

Thank you.

Thank you.

शिक्षक मिलान करना स्थानीय सरकार ने

0: चलाई कर दुराई रहस्य सड़क भवन निदास्ता बिन सड़क भवन सिटाई था यदि हमारा झारखंड निदान का सरपंच रही अथवा जिसके लिए कल सेवर प्रत्यक्ष खाओ आपन बचाओ कर लाख सड़क भवन दसवीं आवित मुकरा आहार खोजी मो बाहर निस्तर बयान मो खरस काटे मेर छाला पेर न्यागा पेर सुगलन कर सी मरे आक्रमण कर लगा समझकर प्रत्यक्ष करना कर मो सड़क दसवीं काट
1: सातवन क्षति पुरै किता कुरा समस्कार अनुरत सातवन डिप्टी की मार सरते थे उसी करवे पे सातवन दशा कथा अपन गांव ठाव समुदाय में बजना सातवन के विषय में आमन जानकारी की पता उस सब कसम कसम का मुंह बैठा कौन कौन गया हो गया किस कथा कौन सातवन जो सत्य रचा करने की समय था बोले ना कथा हम रामा दो आनंद पंगर राव सात आकर्षित न था बोले स्थापन समय मुझे कर पड़ा
0: सड़क मुकर्ण भय पी आपन घर उखेल मैदान का अंदर पंद्रह सत्य सभा बनाई लेना पड़ा चपरास पठा हिला पटकुरी खुला फटाई पठा कर सी पाठी पहला सुखल खास सही व्यवस्थापन कर पड़ा रुख अथवा भूया में रन फलाऊ अथवा दिल में तथा भावी हाथ को असर निरी
1: राठिक समय में भगवान को नेता हम पश्चिम कश्मीर सावधानी अपने पठा अपने पुष्कर से भी सातवन का जोखिम ठाव काम कर
0: अपना जिज्ञासा जवाब देना से आज हमारे श्रोता सहभागी प्रतिक्रिया सुनेन वहां का अपने रक्षा थानी वो मरीजों ठाक पाठक तालमेल कत्ता मिल था उसे हेरमी हमारा कुछ श्रोता सहभागी रातिक समय में वो काम करना प्यार में सर्वतंत्र से बचा अपने कठिन सावधानी अपने आप रखी वो कहा करना कैसा पूछ रहा थी
2: राज्य चल रहे हो बार दिया दस मेरे
1: अपना
0: ठीक करिए हाम्रा खेतबारीको मनोकाठी पत्या लगाएका काम गरम पर्न बजाइदिएपछि नम्बर लक्षित प्रयोग गरेको फुलेमा थप थप बजेटी ल्याएको पर्छ। कहिले साप घाँस त सकाइ नभइरहेपछि घाँस कटना ड्यालामा अमिन थियो रुसिया पर्छ।
1: आर्थिक सम्बन्धमा कामको लगाएर विषयमा सर्वदा जोखिम वो बचत अपना साधारण विषय में जानकारी दिए आज मंत्री विभागीय प्रमुख कमारी पटेल सुर्खेत में कार्यरत सर्वतंश संबंधी विज्ञान डाक्टर के एन पोडेल
3: सुर्खेत

Rapaz, querido, tomamos um cuidado.

Lógicamente, se deu muito certo.

Okay.

ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಭ್ಯಾಸ್ತಿಯಾಗಿ

Thank you.

0: ketika kami sebuah jahat, catan nanti, bahkan sebuah menuju. Ya, sejahat, panipi. Saya ada tunggu dalam belakang, mausami, panipi. Oh, baris pijat sangat jelara menina, jelara menina.
1: आज इंटरनेशनल नेता और पहली बाका करनी है विशेषता समूह भी ग्रुप के साझेदारी में बदिया जिला में संतुलन हुई रहा की पथ पर बदलाने उत्थान चिंता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाभ जारी संदेश
0: नमस्कार।

So 28, 119, 180, 186, 187.